0: आज मैं रिकॉर्डिंग हाँ गड़ी 13 मिनट में दिव्य राज जगह डॉल में गणेश ने मेरा निभा जर हिंदू ने मैं इतके प्रोग्राम ते बिफर में गणेश ने आउट रमीज
1: दें अर्गन आतिफा आधे अर्गन में मैं दिस अगर तेरी सिंह माह में प्रोग्राम आए की का कुरिया दान दें प्रोग्राम आए की का कुरिया दायरो मैं तो अर्गन में माउलो एक गतों में थी एक ही कुत्ते का ज्यादा लेवे गाइडिंग इस्लाह को अंबुरा मुस्तमर निर्मा कुरुविदार ने कांते तक की को बाहे
0: मैं ऐसा मालूम बैलन में बस कहा था कुल्ली खबर इच्छा बोले था देता कुल्ली खबर के क्या फिर धन्यवाद लार और में ना दम में फिरने में एक आगड़ियंग है और खुरी के बाएं खबर बैद में दमालो अन बैद में दमालो में फिरने ने अन बैन उस तक बैल लार होगा कुल्ली खबर है गुत का वारफ हो के खबर के क्या धन्यवाद लाने खबर है नहीं हमें तो आगड़ियर के बाएं खबर तम में होने इन्होंने आगड़ियर के बाएं खबर तम में ਇਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਖਬਰ ਅਲਮਨ ਕੋਨੇ ਫੇਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੱਥੇ ਜਹਰ ਤੇ ਬੇਫਨਾ ਹਮੇ ਅਲਮੇ ਇਮੇ ਫਾਹੋਗੇ ਮੁਹਿੰਮ ਖਬਰ ਤੱਕ ਖਬਰ ਤੋ ਤਫਸੀਲ ਗਨਸਤੇਨ ਤੇ ਬੇਫਨਾ ਅਦੇ ਅਲਮਨ ਨਿਮਾਦ ਮੇ ਕੋਰੀ ਗੈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਨਸਤੇ ਹੋਗੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਰਖੀ ਤੋ ਤੇ ਬੇਫਨਾ ਹਮੇ ਗਨਸਤੇਨ ਐਨੋ ਤਾ ਤੇ ਮਿਓਤੀ ਅਲਮਨ ਕੋਮੇ ਦੁਕਸ ਗਨਸਤੇ ਮੁਗੰਦਾ ਹਿਕਮਤ ਗੇ ਬਸ ਹਕਮਤ ਕੇ ਬਹਾ ਕਿ ਕੰਕਮਾ ਮੇ ਫੋਨ ਕੋਮ ਵਿਸਨਾਂ ਦਸ ਕੋ ਦੀ ਰੰਗਲਾ ਨੋਬੈ ਬਹਿ ਕੁਰਮ ਫਸੇ ਹੋ ਕੋ ਦੇ ਅਖਲਾ ਰੰਗਲ ਕੋ ਮਿਹਾ ਉਲ ਮਾ ਗੇ ਹਿਯ ਮਗਾ ਲਵਾ ਦੇ ਹਿਤਰ ਵੇ ਦੇਚੇ ਗੋ ਤੋ ਮਿਫਾ ਕੁਰਵਨੀ ਦਿਰਲ ਮਗਾ ਦਿਮਾ ਵਾ ਦਤਿ ਉਂਦੋ ਵੋ ਤਕ ਹਾਲਤ ਤੋ ਗਾ ਹਕਮਤ ਰ ਕਮ ਮਹ ਗਨ ਨਿ ਮਗ ਫਹ ਦੇ ਚੇ ਕਮ ਮਗ ਫਹ ਕੋ ਦੇ ਚੇ ਗੋ ਤੋ ਗਾ ਹਕਮਤ ਕੇ ਬਸ ਫਾ ਗੋ ਬਸ ਮੇ ਵਣ ਐਮ ਐਮ ਮਿਹਾ ਸਾ ਮਿਹਾ ਦੇ ਹਕਮਤ ਕੇ ਬਸ ਤੇ ਫਰਨਾ ਹਮੇ ਆਲ ਮਗ ਦਸਤੇ
2: ਹਕਮਤ ਕੇ ਬਸ

आज मैं रिकॉर्डिंग हकड़ 17:30 में दिव्य राज्य का डॉन मगर ने बात जरे हंदने में के प्रोग्राम काल में वाह द काल में गंदा मौदो की एक कुत्ता होगा जदा लेवे गाइडिंग इस्लाह को अमरा मित्र में नरम करे विधान कंत ते ही कोबा है और मैं ना मैं मौदो वाह द काल में बैरे काल में वाह द काल ने वाह द काल ने वरम मुहिम दे दिन हतर कम में फाह कुरवा फे बे दें और मैं के प्रोग्राम में ते बेफलन खिलाफ ता हिस्सा कर मटका हम

ख्या नुदन्न मीहुं विस वे फोतुं विस मुस्तहील उम्मीद तके नूनी एवरेन नकन नुफेने अधि ही तके कुरा खमगा नूनी एवरेन नुए।

0: दत्ता कोलम नोरे में गुंडी गई शींदे आहारे कोलम हो रहा फाना दत्ता ही शींदे
1: हाँ दरंगले खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया
0: कुड़ा कुड़ा है वो कमोकों ऐह मी है गेदा तोरो अमावे उफावेरी बेदाने

मम्मा मम्मा बप्पा दिया था अन्ना ने पार्सल मम्मा ए आहरे मम्मा दें तैयार करी हादिया है अब हाँ खांडा लवा

0: दत्ता कोलम नोरे में गोंडी गई शींदे आहारे कोलम हुरे लफाना दत्ता ही शींदे
1: हाँ दे अंगले खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया
0: कोद्दे वे कुड़ा कुड़ा हेव कमकों एहे मीहे गेदा तोरो अमावे उफावेरी वेदाने
2: कोम्मे उमुरका
3: कोम्मे फांतियका
2: कोम्मे गिंतियका दिवेही राज्ये के अडु इंहा सतरसे के सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
3: अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
4: गडिंग फतिहु हतरी जही मी दिवेही राज्ये गडु